0: सीएसए बायोफोर पीटीए कैंप काटूंगा।
1: सीएसए बायोफोर से भी गो अहेड ओवर।
0: केल्विन स्कूल कैंप काट ऑन योर वे, फोर टीचर्स एंड 41 स्टूडेंट्स, ट्रेन जस्ट लेफ्ट टूर 1 एंड 2, ओवर।
1: Message received door 1 and 2 for the school too. Thank you for the door.